0: Thank you.
1: मैडम जी आपनु बहुत ही प्यारा एक लोकगीत सुनाओगे माइक रेडी कर दे हैं बॉबी साहब ने माइक रेडी कर दिया ये साडे ब्रॉडकास्टर हैं बॉबी पखाना फ्रॉम यूपी इतने ब्रॉडकास्टिंग दी सेवा निभाते हैं बड़ा प्यारा बच्चा है बड़ा रिस्पेक्ट करता है कहिंदा अंकल जी आओ सानू गीत सुनाया करो तो हुण मैडम जी तुहानू एक बड़ा प्यारा है लोग गीत सुनाउणगे
2: हैलो उस तो पहला मैं एक शेर बोलना चाहांगी मेरी दर्द कहानी रातां दी इनू कोई सवेरा की जाने मेरी दर्द कहानी रातां दी इनू कोई सवेरा की जाने तेनू जिगर दिखा के की लैणा तेथों जख्म पछाणे नहीं जाने तेनू जिगर दिखा के की लैणा तेथों जख्म पछाणे नहीं जाने

0: सी गल है। थैंक यू
1: सुरेंद्र कौर पट्टी, इन्होंने बड़ा प्यारा गाना गाया। तो मैं तो बड़ी दाद दिंदा इन्हां नूं, आवाज़ बहुत वधिया सोहनी है। थैंक्स वेरी मच। अगे तो इन्हां दे हसबैंड हरिंदर सिंह पट्टी
2: छू लेने तो आ जाओ जी, दोबारा कोशिश कर रहा
1: है। आओ पट्टी साहब, यू वेलकम एनी टाइम दिस स्टूडेंट।
3: थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली थोड़ा ऐड आ जाती